आप सबका बहुत बहुत स्वागत है नॉनस्टॉप गपशप लेकर आई है चैनिका एफएम रेनबो कोलकाता पर। अभी फिलहाल घड़ी में समय 10:06:15 और हम जैसे कहते हैं कि आपको हम गाने ज्यादा सुनवाते हैं भले ही हमारे कार्यक्रम का नॉनस्टॉप गपशप नाम हो, तो आज भी चलिए सुनते हैं खूबसूरत खूबसूरत गीत और उसके बाद मैं बीच बीच में आपके साथ जुड़ती रहूंगी, सुनवाऊंगी आपको मेरे दिल की कुछ बातें, कुछ मौसम का हाल, कुछ छोटे से प्यारे से मीठे वाले तीखे वाले नुस्खे। अब नुस्खे भी तीखे और मीठे होते हैं ये सोचने वाली बात है, आप ऐसा मतलब आपको लग रहा होगा, लेकिन होते हैं ना भाई ऐसे नुस्खे जिनको आप

अपने जीवन में अप्लाई करें और उससे आपको थोड़ा सा तड़का लगे, हींग लगे, तो वो तीखे होते हैं। मतलब फ़ायदा पहुंचे लेकिन फिर भी थोड़ी मुश्किल से फ़ायदा पहुंचे, आपको मेहनत करनी पड़े, वो तीखे नुस्खे। और मीठे वाले नुस्खे तो बस चुटकी बजाते ही आप अप्लाई कर लें। तो इसलिए नुस्खों का ये क्लासिफिकेशन, मज़ेदार क्लासिफिकेशन आज मेरी तरफ से, आप हज़म कर लीजिए। लेकिन फ़िलहाल तो कार्यक्रम शुरू हो चुका है, रहूँगी मैं सुबह 11 बजे तक आपके साथ। और अभी फ़िलहाल आपके लिए एक खूबसूरत गाना सुनते रहे, साथ रहे, आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जैसे एक बार फिर से आपको याद दिला दूं, FM रेनबो कोलकाता पर। और ये रहा मेरा आज के इस कार्यक्रम का दूसरा गीत, आप लोग बने रहें, सुनते रहें।

जारी है नॉनस्टॉप गपशप। आप सुन रहे हैं फिमरीन कोलकाता चैनिका के साथ। और चलिए अब जान लें कि क्या कुछ घटा इतिहास में आज के दिन। 1502 में

नई दुनिया के सबसे बड़े खोजी यात्री और नई दुनिया के खोजकर्ता माने जाने वाले क्रिस्टोफर कोलंबस ने एशिया का रास्ता तलाश करने के लिए स्पेन के कादिज से अपनी चौथी यात्रा शुरू की थी आज ही के दिन। इसके अलावा 1540 में कई सालों तक मुगल शासक अकबर से संघर्ष करने वाले मेवाड़ के महाराणा प्रताप का जन्म हुआ था आज ही के दिन। और हमें पता चलता है यह कि 1866 में महान नेता, समाज सुधारक और विचारक गोपाल कृष्ण गोखले का आज जन्म हुआ था। 1946 में डॉक्टर राम मनोहर लोहिया की अगुवाई में गोवा में पुर्तगाल के शासन के खिलाफ पहला सत्याग्रह आंदोलन भी आज ही के दिन शुरू हुआ था। 1975 में आज ही के दिन पहली विद्युत टंकण मशीन बनाई गई और 1986 में आज ही के दिन पर्वतारोही तेंजिंग नोर्गे का निधन हुआ था। और जो खास आज का दिन है, हम सब जानते हैं आज वैशाख महीने का 25वां दिन है जो रविंद्रनाथ ठाकुर की जयंती के रूप में जाना जाता है और अभूतपूर्व उत्साह के साथ केवल हमारे राज्य में नहीं पूरे देश में इस दिन को मनाया जाता है। हमारे यहाँ पोचिशे बैशाख को हम हर साल गुरुदेव का जन्मदिन मनाते हैं और ऐसा कोई ही शायद मिले बांग्ला भाषियों के बीच जिसने टैगोर की रचनाओं को ना पढ़ा हो, उनके संगीत से प्रभावित ना रहा हो और जीवन के हर पहलू और मानवीय भावनाओं के साथ गहराई से जुड़े हुए हैं, हमारे साथ हमारे जीवन के हर मोड़ पर जिस तरह एक दोस्त बनकर खड़े हैं गुरुदेव रविंद्रनाथ ठाकुर। और इस मौके पर चलिए एक हिंदी फिल्मी गीत सुनते हैं जो इंस्पायर रहा उनकी ही एक कृति से, तुम्हार होलो शुरू आमार होलो शुरू।

सुन रहे हैं आप कार्यक्रम नॉन स्टॉप गपशप चैनिक आया आपके साथ। और अब समय हो चला है कि मैं आपको बता दूं मौसम विभाग हमें क्या बता रहा है आज आने वाले 24 घंटों के मौसम के बारे में, या फिर यूं कहूं कि क्या करना है आपको, सतर्क किस प्रकार रहना है, साथ में आपको अम्ब्रेला रखना है या रखनी है पानी की बॉटल, यानी होने वाली है बारिश या बहुत गर्मी, उमस, पसीने से लथपथ होकर आपको आज का ये दिन बिताना है। वेल, जो आने वाले 24 घंटों का जो फोरकास्ट है, जो हमें मौसम विभाग ने बताया है, कह रहे हैं वो कि आंशिक तौर पर आसमान में बादल छाए रहेंगे और गरज के साथ हल्की बारिश होने के आसार हैं। अधिकतम तापमान रहेगा 33 डिग्री सेल्सियस के आसपास और 24 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने वाला है न्यूनतम तापमान। और अगर मैं बताऊं कि पिछले 24 घंटे का क्या हाल रहा, तो इसी तरह की मतलब गर्मी का माहौल ही था। अधिकतम तापमान 32.6 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 23.6 डिग्री के आसपास दर्ज किया गया। और रेनफॉल पिछले 24 घंटे की अगर हम बात करें तो 001.8 मिलीमीटर दर्ज की गई, एकदम नगण्य रेनफॉल। और हमारे जो मछुआरे भाई हैं उनके लिए भी किसी भी तरह की कोई भी वार्निंग नहीं है, यानी वो आराम से जा सकते हैं अपने काम पर, समुद्र की तरफ वो कूच कर सकते हैं। और अभी फिलहाल चलिए एक और गाना हम सुनते हैं, ये खूबसूरत सा गीत केवल और केवल आपके लिए हमारे इस चैनल पर। आप सुन रहे हैं एफएम रेनबो कोलकाता, जहाँ पर हमने आपको कहा ही है, बताया है कि हम बातें कम करते हैं और गाने ज़्यादा सुनवाते हैं।

जारी है नॉन स्टॉप गपशप चैनिका के साथ। अभी फिलहाल घड़ी में समय दर्ज बजकर 30 मिनट और 21 सेकंड्स, और गप्पे तो बीच बीच में हमें मारनी पड़ेंगी, क्या ही कहा जाए। गाने हम आपको ज्यादा अवश्य सुनवाएंगे, जैसे कि हम कहते हैं, हमारा जैसा वादा है। वैसे ये आपको एक चीज मैं याद दिलाना चाहूंगी, वो ये कि हर साल 8 मई को विश्व थैलेसीमिया दिवस मनाया जाता है। कल भी यानी शुक्रवार को यह मनाया गया, और ये दिन थैलेसीमिया रोग के प्रति जागरूकता फैलाने, मरीजों को सहायता देने के लिए और इसके रोकथाम के उपायों पर डिस्कस करने के लिए ये दिन जो है ये समर्पित है। और मैं आपको बताऊं कि ये एक आनुवांशिक रक्त विकार है, आप ज़रूर जानते होंगे इसके बारे में, जो माता पिता से बच्चों में फैलता है। इसलिए तो आजकल शादी से पहले ब्राइड और ग्रूम दोनों को प्री मैरिटल काउंसलिंग में थैलेसीमिया के लिए भी ब्लड टेस्ट करवाने की सलाह दी जाती है। और शादी से पहले ये जो कैरियर स्क्रीनिंग है इसको किया जाता है, और प्रेगनेंसी के दौरान भी ये जांच जो है बहुत ज़रूरी है, यानी अलग अलग फेजेस में ये जांच जो है वो ज़रूरी है, ताकि माता पिता से होने वाले बच्चों में ये ना फैले। और भारत की अगर हम बात करें तो थैलेसीमिया का जो बोझ है वो बढ़ रहा है, और देश में हजारों बच्चे हर साल इस गंभीर बीमारी के साथ ही पैदा हो रहे हैं, क्योंकि स्क्रीनिंग नहीं होती, ना कैरियर स्क्रीनिंग होती है, ना ही प्री मैरिटल काउंसलिंग में मतलब सलाह दी जाती है, लोग जाते नहीं हैं प्री मैरिटल काउंसलिंग के लिए। और आपको मैं बताऊं अगर आंकड़ों की बात, तो पंजाब, गुजरात, महाराष्ट्र, हमारे राज्य पश्चिम बंगाल और दिल्ली एनसीआर जैसे राज्यों में संक्रमण की बेहद उच्च दर देखी गई है। इसलिए हम सभी को जागरूक होने की आवश्यकता है। ध्यान रहे, कुंडली मिलाएं ना मिलाएं, प्री मैरिटल जो स्क्रीनिंग है वो आपकी जरूर होनी चाहिए, ध्यान रखिएगा।

सुन रहे हैं आप नॉन स्टॉप गपशप चैनिका के साथ। 10:38 और 55 सेकंड फिलहाल शुरू की घड़ी में एकदम सही समय, और ये सही समय है एक चुटकी नुस्खे का। कल मदर्स डे है, सोच रहे हैं माँ को क्या गिफ्ट दिया जाए। माँ को रेगुलर गिफ्ट आइटम्स की बजाय ऐसा कुछ दें जो उसे अपने पुराने वर्जन से मिलवा दे, वो जो अब कहीं छुप गई है, उसे ढूंढने में माँ की मदद कीजिए। माँ के साथ कोई ऐसी एक्टिविटी कीजिए, उसे कोई ऐसा एक्सपीरियंस दीजिए जो उसे अपने आप से मिलवा दे। माँ को डांस का शौक था तो कोई वर्कशॉप चल रही है तो वहां ले जाइए। फिल्मों की शौकीन हो तो साथ एक कोई भी अच्छी वाली फिल्म का एक शो दिखाइए। घूमने का शौक रखती है तो 2 दिन के लिए एक गेटवे प्लान कर लें, वीकेंड है ना। और जो हॉबीज छूट गई हैं उसकी, वो दोबारा से शुरू करने में माँ को हेल्प कीजिए। और हाँ, एक और बेहद जरूरी बात, किचन से इस दिन उसे जरूर छुट्टी मिलनी चाहिए। तो मेक श्योर हाँ कि कुछ भी सुबह के ब्रेकफास्ट से लेकर रात के डिनर तक किसी भी चीज़ में माँ की इन्वॉल्वमेंट ना हो, कल बस उसको ट्रीट कीजिए। क्योंकि ये जो रापता है ये बड़ा ही रेयर वाला रापता है जो माँ का आपके साथ है, आपके साथ माँ का है, वो भी तो आपके अंदर की जो चीज़ें हैं वो छू कर, बिना छुए आपके दिल को छू लेती है, और बिना कुछ देखे समझे आपको लगता है कि माँ, कभी कभी होता है ना कि माँ के साथ तकरार हो जाए तो लगता है माँ नहीं जानती, माँ मुझे समझती नहीं, लेकिन वो सब कुछ समझ लेती है बिना आपके दिल को स्पर्श किए, आपके दिल की सारी बातें वो जान लेती है। और ये रिश्ता सच में बहुत प्रेशियस है, इसलिए इसको सहेज कर रखिए। और मेरा जो नुस्खा है इसको जरूर आजमाइएगा कल।

दिल से दिल तक वाला गुड आफ्टरनून दोस्तों, ये है 107 एफएम रेनबो यानी कि कोलकाता का सिटी ऑफ जॉय का दी रियल रेडियो, और आप सभी का तहे दिल से मैं वेलकम करती हूँ, स्वागत करती हूँ, खैर मकदम करती हूँ उसी कार्यक्रम में जिसका नाम है 3 का तड़का #, दिल धड़का यानी कि ट्रिपल म्यूजिकल एनर्जी बूस्टर प्रोग्राम। स्टूडियो की घड़ी में समय हो चला है 3:03 और आपकी आरजे फ्रेंड सुलक्षणा तैयार है लेके 3 का तड़का। अब क्या है कि मतलब ये जो है ना 107, ये हमारा वो बंधु है जो सुबह शाम दिन रात हमारे साथ रहता है, म्यूजिकल फ्रेंड, म्यूजिकल ट्रू फ्रेंड,

चलिए दोस्तों, इस गीत को आपने सुना किसकी आवाज में, ये भी बता देती हूँ। फिल्म कॉकटेल से नीरज श्रीधर और कविता सेठ की आवाज में इस गीत को सुना, तुम ही हो बंधु सखा तुम ही हो। और ये बंधु और सखा, मतलब यूं तो बंधु और सखा आपके जीवन में कई हो सकते हैं, लेकिन द रियल रेडियो वाला, म्यूजिकली योर्स वाला, दिल से दिल तक वाला जो है वो बस एक ही है, वो है 107 एफएम रेनबो। और आप सुन रहे तीन का तड़का, हैशटैग दिल धड़का, ट्रिपल म्यूजिकल एनर्जी बूस्टर प्रोग्राम। और ऐसा है ना कि इसमें मतलब क्या है ना कि जब ढलती दोपहरी है ना, ये जब शाम की ओर करवट लेती है, उस वक्त हम आपके लिए ये म्यूजिकल तोहफा लेकर आते हैं जिसका नाम है तीन का तड़का। अब अगला गाना है, ये भी फिल्म कॉकटेल से ही है, यारियां। मोहन कानन और शिल्पा राव की आवाज में इस गीत को सुनेंगे।

ऐसा है दोस्तों कि बहुत सारे लोग ऐसे भी होंगे जो ठीक 3:02 पे ट्यून नहीं किए होंगे 107, कोई काम आ गया होगा, कोई इमरजेंसी होगी या फिर मतलब थोड़े बहुत लेट हो गया होगा किसी भी कारण से। तो ऐसा मत समझिए कि अगर आपने 5-10 मिनट लेट ट्यून किया है तो मैं आपका स्वागत नहीं करूंगी, बिल्कुल करूंगी। तो जिन्होंने लेट से ट्यून किया है उन सभी को फिर से मतलब जो पहले हैं उन्हें तो डबल वेलकम कर रही हूँ, लेकिन जिन्होंने बाद में ट्यून किया उनका भी मैं स्वागत करती हूँ इस कार्यक्रम में 3 का तड़का में। और ऐसा है दोस्तों कि 3 का तड़का मतलब एंटरटेनमेंट की दुनिया की बात है, और एंटरटेनमेंट ये शब्द है ना मतलब पूरी दुनिया में अगर किसी को कहिए एंटरटेनमेंट तो कहेगा बॉलीवुड। अरे बॉलीवुड मतलब इंडिया और इंडिया मतलब बॉलीवुड। अब क्या है कि मई 2026 में बॉलीवुड फिल्मों का जबरदस्त जमावड़ा देखने को मिलेगा, जिसमें ऐतिहासिक ड्रामा से लेकर रोमांटिक कॉमेडी तक शामिल है। तो बाय द टाइम आप सोचे कौन कौन सी फिल्में होगी या क्या क्या मैं बताऊंगी, तब तक क्यों ना सुन लिया जाए जावेद बशीर की आवाज में ये अगला ट्रैक।

ऐसा है दोस्तों कि बीते कल यानी कि 8 मई 2026 को नीतू सिंह और कपिल शर्मा की कॉमेडी फिल्म ड्रामा मतलब कॉमेडी ड्रामा फिल्म जो है गबरू रिलीज हुई और 8 मई ही 2026 कल सनी देओल की एक्शन फिल्म जो है वो भी रिलीज हुई। अब फिलहाल जो है आप ये प्लान करें कि ये फिल्में आप कब देखेंगे, कैसे देखेंगे और देखते देखते क्या क्या खाना है ये आप डिसाइड कीजिए। फिलहाल मैं आपके लिए प्ले करती हूँ किस्मत कनेक्शन का फिल्म से एक अगला एक गीत और ये गीत सुनकर वाकई में आपको बहुत अच्छा लगेगा। यानी कि अगर मैं कहूँ कि हर एक गीत जो आप सुनते हैं दिल से दिल तक वाले चैनल पर आपके दिल को डायरेक्टली जाके टच करता है और कहता है क्या हम और आप जुड़े हैं हार्ट टू हार्ट।

चलिए गाने की तो बात कर ही रहे हैं और गाने प्ले कर भी रहे हैं, लेकिन कुछ गपशप भी हो जाए बॉलीवुड से जुड़ी हुई। ऐसा है दोस्तों कि रणवीर और आलिया का नया घर आजकल बहुत चर्चे में है। रणवीर कपूर और आलिया भट्ट का नया आलिशान बंगला कृष्णा राज अब पूरी तरह तैयार हो चुका है, जिसकी कीमत जानना चाहेंगे कितना है? अजी लगभग 250 करोड़ रुपए बताई जा रही है। तो जब तक आप सोचें कि कितना समय लगेगा 250 करोड़ गिनने में या कमाने में, तब तक क्यों ना मैं अगला गीत आपको सुनवाऊं फिल्म काइट्स से।

ऐसा है दोस्तों कि नीतू कपिल की फिल्म, नीति कपूर और कपिल शर्मा की फिल्म दादी की शादी बॉक्स ऑफिस पर पहले दिन उम्मीद के मुताबिक प्रदर्शन नहीं कर पाई, बट उससे क्या हुआ, द शो मस्ट गो ऑन। अगला गीत गरम मसाला फिल्म से।

0: गरम मसाला।
1: जी हाँ, गरम मसाला की बात हो रही है। अब ऐसा है कि बॉलीवुड से ज़्यादा गरम मसाला आपको कहीं भी नहीं मिलेगा, क्योंकि वो एक ऐसी एंटरटेनमेंट की दुनिया है कि आपको हल्के मसाले से लेके स्पाइसी मसाले से लेके मतलब जितने भी फ्लेवर्स होते हैं ना, स्वाद के ज़्यादा फ्लेवर्स तो रहते ही हैं, दिल के भी सारे इमोशंस के फ्लेवर आपको मिलते हैं। और अब आपको बता दें, कृति सनन ने हाल ही में एक बयान दिया है। अब आप तो ये जानने की उत्सुकता तो आप में होगी कि क्या बयान दिया है कृति सनन ने। तो मैं बता दूं, कृति सनन ने बॉलीवुड में पुरुष कलाकारों की तुलना में कम फीस मिलने के मुद्दे पर खुलकर बात की है। भैया, अगर काम अगर आप करते हो ढंग से और बराबरी से, तो फिर जो है ना, ये बात तो मतलब मैं क्या कहूँ, अब आप खुद ही समझ सकते हो। और हर मेहनत करने वाला चाहता है कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा पैसा मिले। भला ऐसा कौन है जो चाहता होगा कि काम करे और पैसा हमें कम मिले, क्योंकि पैसा बोलता है। लेकिन फिलहाल अगला गाना आप सभी के लिए फिल्म झुंड से।

म्यूजिकली योर्स पर इस वक्त आप सुन रहे हैं आपका फेवरेट नून शो यानी कि तीन का तड़का हैशटैग दिल धड़का आपकी अपनी आरजी फ्रेंड सुलक्षणा पर्वत के संग और ट्रिपल म्यूजिकल एनर्जी बूस्टर प्रोग्राम है ये। और ऐसा है दोस्तों कि अब अगला गाना जो आप सुनेंगे उसे हमने लिया है उस फिल्म से

और फिल्म का नाम था भूल भुलैया टू। मैं भी कुछ उसी भूल भुलैया टू के अंदाज में ही बात कर रही हूँ, और जो गाना है उसे आप सुनेंगे अरमान मलिक और यो यो हनी सिंह के साथ, इन दोनों की आवाज में। और इनके साथ ही और भी साथी कलाकार हैं जो साथ दिए हैं, संगीत से सवारा इस गीत को प्रीतम ने और गीतकार हैं अमिताभ भट्टाचार्य ने। तो क्या देर ना करते हुए दे ताली।

का गाना जो है अजी, देखिए ऐसा है ना कि ये बॉलीवुड वाले हैं, कोई भी सिचुएशन हो, कोई भी लोकेशन हो, कोई भी फीलिंग हो, कोई भी इमोशन हो, कोई भी बात हो, उस पे गाना तैयार कर देते हैं। अजी एक मिस्टेक वाला जो शब्द है ना, उस मिस्टेक पे भी गाने बन जाते हैं। अब गाना कौन सा है मैं क्या बताऊं, आप खुद ही सुन लीजिए ना। जग्गा जासू से ये गाना मैं प्ले कर रही हूं।

अभी जो गाना आपने सुना उसे हमने लिया था फिल्म बैड बॉय से। अरिजीत सिंह और ज्योतिका टांगरे की आवाज में इस गीत को आपने सुना। और

सूर्य की घड़ी में समय हो चला है 3:53 और इस वक्त आपने ट्यून कर रखा है सिटी ऑफ जॉय कोलकाता का द रियल रेडियो यानी कि 107 एफएम रेनबो। अजी जिसे हम कहते हैं ना म्यूजिकली योर्स, यही वो म्यूजिकली योर्स वाला चैनल है जिसपे आप सुन रहे हैं 3 का तड़का हैशटैग दिल धड़का सुलक्षणा पर्वत के संग। और ऐसा है दोस्तों कि देखिए अभी 4 बजे मैं जाऊंगी, जाना तो पड़ेगा ही ना, क्योंकि 4 बजे से जो है 2 मिनट के लिए आप स्थानीय समाचार सुनेंगे और वो स्थानीय समाचार सुनने के बाद आप नेक्स्ट प्रोग्राम सुनेंगे, अगला कार्यक्रम सुनेंगे बंगला में। और ऐसा है कि ये आना जाना जो है ना इसका क्रम लगा रहता है, बना रहता है, और इसी क्रम को देखते हुए समझते हुए बूझते हुए मैं वापस आऊँगी ना, मैं वापस आऊंगी 7:02 पर इसी चैनल पर यानी कि दिल से दिल तक वाले चैनल पर लेके कार्यक्रम छाया लोग। और ऐसा है दोस्तों कि आपका और हमारा साथ यूं ही बना रहे और हमारा जो ये सफ़र है 3 का तड़का का यूं ही सालों साल चलता रहे।

चलिए म्यूजिकली योर्स पर अब जैसा कि मैंने कहा मुझे जाना पड़ेगा और जाते जाते आप सभी के लिए फिल्म लुटेरा से एक बहुत ही खूबसूरत गीत स्वानंद किरकिरे की आवाज़ में और प्रीतम ने संगीतबद्ध किया है इस गीत को और चलते चलते इस गीत को सुनिए और सुलक्षणा को आज्ञा दीजिए फिर मुलाकात होगी 7:02 पर। लेकिन इसी बीच अगर आप चाहें तो मुझे सुन सकते हैं कहाँ अजी वहीं खरा सोना है। और फिलहाल चलते चलते यही कहूंगी स्वस्थ रहिए मस्त रहिए व्यस्त रहिए और चारों तरफ

सिटी ऑफ जॉय कोलकाता और उस कोलकाता के दी रियल रेडियो यानी कि 107 एफएम रेनबो पर ढेर सारा प्यार और अपनेपन के साथ आप सभी श्रोताओं का तहे दिल से स्वागत करती है, अभिनंदन करती है, वेलकम करती है कार्यक्रम छाया लोक में। हाँ जी, जिसे मैं कहती हूँ म्यूजिकल एनर्जी बूस्टर प्रोग्राम। तो आपको याद है कि हमेशा से छाया लोक मतलब म्यूजिकल एनर्जी बूस्टर प्रोग्राम। स्टूडियो की घड़ी में समय उछला है 7:03 और आपकी आज फ्रेंड सुलक्षणा पर्वत बिल्कुल तैयार है लेकर कार्यक्रम छाया लोक। और फिलहाल सबसे पहला गाना आप सभी के लिए फिल्म लुटेरा से स्वानंद किरकिरे की आवाज में।

मौसम संबंधी सूचना। मध्यम गरज के साथ बारिश और बिजली कड़कने के साथ हल्की से मध्यम बारिश और 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से तेज हवा चलने की संभावना है। अगले 2-3 घंटों में यानी कि 6:54 से आगे आज 9/5/2024 को पुरुलिया, बांकुरा, पश्चिम बर्धवान जिले के कुछ हिस्सों पर इसका असर पड़ने की संभावना है। मौसम संबंधी सूचना समाप्त हुई।

किशोर कुमार और आशा भोसले की आवाज में इस सदाबहार गीत को आपने सुना फिल्म दीवार से, कह दूं तुम्हें या ना कहूं। अब ऐसा है दोस्तों कि मतलब कुछ गाने ऐसे हैं बॉलीवुड के कि मतलब आप चाहे जितने भी स्ट्रेस में रहे अगर उन गानों को कहीं सुनते हैं ना तो गुनगुनाने को जी चाहता है। उन्हीं में से एक गाना ये भी था। और अब अगला गीत आपको मैं सुनवाना चाहूंगी उस फिल्म से जिसका नाम है गाइड। फिल्म रिलीज हुई थी 1965 में और इस फिल्म में जो लीड रोल में दिखे थे देव आनंद और वहीदा रहमान, भारतीय सिनेमा की सबसे प्रतिष्ठित फिल्मों में से एक है। तो भला इस फिल्म से क्यों ना हम एक नहीं दो दो गीत सुनें।

म्यूजिकली योर्स पर आप सुन रहे हैं म्यूजिकल एनर्जी बूस्ट प्रोग्राम छाया लोक, आपकी अपनी आज फ्रेंड सुलक्षणा पर्वत के संग। स्टूडियो की घड़ी में समय हो चला है 7:27:18 और फिलहाल आप सुन रहे हैं म्यूजिकल एनर्जी बूस्ट प्रोग्राम। और ऐसा है दोस्तों, अगला गाना मैं आपको सुनवाऊंगी फिल्म दीवाना से। और आपको बता दूं कि 1992 में रिलीज हुई दीवाना ऋषि कपूर, दिव्या भारती और शाहरुख खान अभिनीत एक ब्लॉकबस्टर रोमांटिक ड्रामा थी जिसने शाहरुख खान को रातों रात स्टार बना दिया। ये फिल्म उनके लिए टर्निंग पॉइंट साबित हुई जिसके लिए उन्होंने अपना पहला फिल्म फेयर बेस्ट मेल डेब्यू अवार्ड जीता। ये फिल्म नदीम श्रवण की सुपरहिट संगीत के लिए सुप्रसिद्ध है। और कुछ ऐसी भी जुड़ी अनसुनी बातें हैं जो आपसे साझा करना चाहूंगी। शाहरुख खान पहली पसंद नहीं थे इस फिल्म के लिए, इसकी भूमिका के लिए वास्तव में सनी देओल पहली पसंद थे। जब उन्होंने मना कर दिया तो उनके पिता धर्मेंद्र ने एक नए कलाकार के रूप में शाहरुख खान की सिफारिश की। तो चलिए सुनवाती हूं आपको फिल्म दीवाना से। क्यों, क्या कहते हैं, इस फिल्म से भी एक नहीं दो गाने सुनेंगे। चलिए, ये तो इंसान का स्वभाव होता है, अगर फिल्म अच्छी हो तो मन करता है कि बस उस फिल्म के सारे गाने सुने, सारे नहीं लेकिन हाँ एक नहीं बल्कि दो गाने आपको सुनवाऊंगी। लेकिन पहले शुरुआत करूंगी फिल्म पायलिया से, इस फिल्म के गाने के लिए।

इस गीत को आपने सुना कुमार शानू और अलका याग्निक की आवाज में, पायलिया हो फिल्म दीवाना से। ये फिल्म रिलीज हुई थी 1992 में और इस गीत को कलमबद्ध किया था समीर ने, संगीत से सजाया नदीम श्रवण ने। और अब अगला गीत फिल्म दीवाना से, ऐसी दीवानगी, अलका याग्निक और विनोद राठौर की आवाज में।

2005 में एक हिंदी फिल्म रिलीज हुई थी। यूं तो कई फिल्में रिलीज हुई थी उस साल, लेकिन उसमें से एक फिल्म थी परिणीता। बॉलीवुड की कल्ट क्लासिक फिल्मों में से एक, जो अपने संगीत, अभिनय और शानदार कोलकाता यानी कि कलकत्ता चित्रण के लिए जानी जाती है। और ऐसा है कि विद्या बालन की डेब्यू फिल्म थी ये, 2005 में रिलीज हुई थी। ऐसे अगर बताऊं तो ये बताना लाजमी है, जरूरी है कि उन्होंने 2003 में एक बंगाली फिल्म से डेब्यू किया था, लेकिन हिंदी फिल्म में पदार्पण किया उन्होंने फिल्म परिणीता से। और इस फिल्म में, ये फिल्म विद्या बालन की बॉलीवुड में पहली फिल्म थी जिसमें उन्होंने लोलिता का यादगार किरदार निभाया था।

ऐसा है दोस्तों कि इस फिल्म में फिल्म का नरेशन एक नरेटर के तौर पर जो है उसमें आप कह सकते हैं कि कमेंट्री एक तरीके से वो करने की इच्छा जताई थी अमिताभ बच्चन ने और उन्होंने किया भी था। उनका कहना था कि कोलकाता में जब वो पहली बार आए थे और उनके जो स्ट्रगल की पीरियड थी उसे उन्होंने याद किया और उन्हें बड़ी खुशी हुई। इस फिल्म की शुरुआत उनकी ही आवाज़ों से होती है और इस फिल्म की कहानी की शुरुआत जो है उनकी आवाज़ में हुई थी, उन्होंने ही बताया। और अब अगला गाना

स्टूडियो की घड़ी में समय हो चला है 7:54 यानी कि आपको बता दूं 8 बजे से आप सुनेंगे स्थानीय समाचार 2 मिनट के लिए, यानी कि बंगला में समाचार सुनेंगे। और आपको बता दूं कि ये जो गाने आपने सुने ना, दो दो गाने फिल्म परिणीता से, तो विद्या बालन फिल्म में आने से पहले, सिल्वर स्क्रीन पर दिखने से पहले, वो छोटे वाले जिसे हम इडियट बॉक्स कहते हैं ना, टेलीविजन पर नजर आई थी, और एक सीरियल में उन्होंने राधिका माथुर का जो है, उनकी राधिका माथुर की भूमिका निभाई थी, जो चश्मा पहनती थी और बहुत पढ़ाकू थी। ये सीरियल रिलीज हुई थी इन द ईयर 1995। जी हाँ, दूरदर्शन पे तो नहीं, लेकिन एक चैनल पे ये सीरियल आती थी हम 5, और काफी हिट हुई थी। और राधिका जो है वो आ गई हम 5 से सीधे सिल्वर स्क्रीन पर, जी हाँ, फिल्म परिणीति में। तो ये कोई भी नहीं कह सकता कि कल को क्या होगा, यू नेवर नो कि भविष्य के कोख में सफलता की कौन से पायदान पर आप आगे जाएंगे। और फिलहाल अगला गीत आप सभी के लिए फिल्म दंगल से, और दंगल के इस गीत को आप सुनेंगे अरिजीत सिंह की आवाज में। और आपको बता दूं कि ये जो गाना है ना, इस गाने के दौरान फिल्म में आमिर खान जो है काफी भावुक हो गए थे, और भावुक पलों को जो है ये गाना दर्शाता है। और ये फिल्म रिलीज हुई थी इन द ईयर 2016। तो चलिए इस गीत को सुनते सुनते रुक करते हैं, हाँ, स्थानीय समाचार की ओर।

एक बार फिर तहे दिल से आप सभी श्रोताओं का दिल से दिल तक वाला नमस्कार के साथ स्वागत करती है आपकी आरजी फ्रेंड सुलक्षणा पर्वत उसी कार्यक्रम में जिसका नाम है छाया लोक। और अपने तरीके में मैं कहती हूँ कि ये है म्यूजिकल एनर्जी बूस्टर प्रोग्राम और जिसका इंतजार आप बेसब्री से करते हैं और ये आपकी दीवानगी है इस कार्यक्रम के प्रति, इस चैनल के प्रति कि 7 बजे से लेकर 9 बजे तक आप लगातार कंटिन्यूस इस प्रोग्राम को सुनते हैं। और यही तो USP है 107 FM रेनबो का कि कोई भी कार्यक्रम हो आप सुनने के लिए बाध्य हैं क्योंकि ये कार्यक्रम होते ही हैं एक से बढ़कर एक। और फिर बात करें अगर छाया लोक की फिर क्या कहने, और उसमें भी अगर सुलक्षणा हो तो फिर बातों का सिलसिला यूं ही चलते रहेगा। लेकिन आपको बता दूं कि अब ये जो न्यूज़ ब्रेक के बाद जो पहला गाना आप सुनेंगे उसे हमने लिया है फिल्म रोजा से, भारत हमको जान से है प्यारा। हरिहरन की आवाज़ में सुनते हैं इस गीत को।

दोस्तों की आपको बता दूं कि ये फिल्म रोजा के जो साउंड ट्रैक है, टाइम मैगजीन ने इसे सम्मान दिया था और रोजा के साउंड ट्रैक को टाइम मैगजीन की 10 सर्वश्रेष्ठ साउंड ट्रैक 10 बेस्ट साउंड ट्रैक्स की सर्वकालिक सूची में शामिल किया गया था।

दोस्तों, आज कॉलेज का आखिरी दिन है और आने वाली जिंदगी के लिए सभी ने कुछ सोच रखा है, लेकिन मैंने अपने लिए कुछ नहीं सोचा है। नो रियली, आई मीन इट। और आज मुझे बार बार एक ही ख्याल आ रहा है,

उदित नारायण की आवाज में आपने सुना कयामत से कयामत तक यानी कि QSQT से ये गीत पापा कहते हैं। और ये फिल्म रिलीज हुई थी इन द ईयर 1988 और 1988 में रिलीज हुई और आमिर खान और जूही चावला की फिल्म कयामत से कयामत तक ने बॉलीवुड में नए दौर की शुरुआत की, जिसने रोमांटिक फिल्मों और लंबे शीर्षक जैसे दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे का ट्रेंड सेट किया। ये फिल्म ना केवल सुपरहिट रही बल्कि इसे फिल्म फेयर अवार्ड फॉर बेस्ट फिल्म भी जीता। और क्या बताऊं आपको,

इस फिल्म के पोस्टर जो है आमिर खान कई सारे गाड़ियों के पीछे, ऑटो रिक्शा के पीछे भी खुद लगाए थे। और एक पोस्टर ऐसा भी था जिसमें मतलब काफ़ी प्रसिद्ध हुआ वो पोस्टर, और उसमें लिखा हुआ क्या था आपको बता दूं उस अनोखे विज्ञापन में, कि फिल्म का सबसे प्रसिद्ध पोस्टर केवल एक पंथी का था, हु इज आमिर खान, आस्क द गर्ल नेक्स्ट डोर। और इसी के साथ मतलब ये दोनों तो रातों रात स्टार बन ही गए, लेकिन ये बात भला मैं आपसे कैसे ना शेयर करूं कि याद होगा कि बी आर चोपड़ा ने महाभारत सीरियल डायरेक्ट किया था, और इस महाभारत के लिए, इस महाभारत में द्रौपदी के किरदार के लिए पहली पसंद जूही चावला थी। ये बात और है कि उन्होंने इस किरदार को नहीं निभा पाया किसी ना किसी कारणवश, उनके जो भी कारण रहे हो निजी, लेकिन ये बात भी बहुत जानने वाली बात है कि बी आर चोपड़ा ने जूही चावला को पहले द्रौपदी के रोल के लिए पसंद किया था महाभारत में। और अब जो है अगला गाना सुनते हैं डी डी एल जैसे।

ऐसा है दोस्तों कि अगला गाना मैं आपको सुनवाऊंगी फिल्म परदेश से, और आपको बता दूं कि फिल्म परदेश में नजर आई थी महिमा चौधरी गंगा के किरदार में, और किन्हीं कारणों से आपको बता दूं कि माधुरी जो हैं वो सुभाष गाय की पहले लेना चाहते थे माधुरी दीक्षित को, लेकिन किसी कारणवश वो ये फिल्म नहीं की, कुछ उनके निजी कारण थे, और तब जो है हमने महिमा को देखा इस फिल्म में गंगा के किरदार में। और चलिए पहले गाना सुनाती हूँ।

इस फिल्म से जुड़ी कुछ और बातें भी बताऊंगी, लेकिन भला वो बात कैसे मैं बताना भूल जाऊं आपको कि इस फिल्म में शाहरुख खान के डुप्लीकेट का जो है इस्तेमाल किया गया था, अगर नहीं बताऊंगी तो शायद दिमाग से निकल जाए। फिल्म के मशहूर गाने ये दिल दीवाना की शूटिंग के दौरान शाहरुख खान अपनी प्रेग्नेंट पत्नी गौरी के साथ रहने के लिए दिल्ली चले गए थे। गाने के अधिकांश लॉन्ग शॉट शाहरुख के डुप्लीकेट ने शूट किया, जबकि क्लोजअप बाद में शाहरुख ने दिया।

फिल्म परदेश से सुनते हैं अगला ट्रैक कविता कृष्णमूर्ति और हरिहरन की आवाज में। साथ दिया था शंकर महादेवन ने भी इस गीत में।

ना है और वो ये है किस इलाके के लिए है, किस एरिया के लिए, वो भी बता देती हूँ। मध्यम गरज और बिजली के साथ हल्की से मध्यम बारिश, 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवा चलने की संभावना है अगले 2-3 घंटों में। पश्चिम मिदनापुर जिले के कुछ हिस्सों पर असर पड़ने की संभावना है। और अब मौसम संबंधी सूचना समाप्त हुई और अगला गाना आप सभी के लिए फिल्म दामिनी से, गवाह है चांद तारे गवाह है।

मौसम संबंधी सूचना, मध्यम गरज और बिजली के साथ हल्की से मध्यम बारिश और 40 से 50 घंटे किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवा चलने की संभावना है। अगले 2-3 घंटों में आज 9/5/2026 को पश्चिम मेदिनीपुर जिले के कुछ हिस्सों पर असर पड़ने की संभावना है। इसी के साथ मौसम संबंधी एक और सूचना

ये बात जो है ना, ये म्यूजिकली योर्स पर भी लागू होता है कि तुम जो मिल गए हो मानो जहां मिल गया, क्योंकि ये रहता है आपके साथ 24/7 ऑल डे ऑल नाइट, और जुड़ता भी है भला कैसे, हार्ट टू हार्ट, दिल से दिल तक वाला कनेक्शन है। और अब समय हो चला है स्टूडियो की घड़ी में 8:56 और फिलहाल मतलब ये तो कहना ही पड़ेगा कि अब आज के कार्यक्रम छाया लोक का जो अंतिम गीत है उसे मैं आपके लिए प्ले करूंगी। जी हाँ, शंकर महादेवन की आवाज में इस गीत को सुनेंगे, फिल्म दिल चाहता है से। अब भाई हम दिल से दिल तक वाले हैं तो क्यों ना ये गाना सुन के मैं कार्यक्रम को रैप अप करूं। और सुलक्षणा पर्वत आप सभी से यही कहेगी कि स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए और चारों तरफ खुशियों के फूल बिखेरते रहिए, क्योंकि आप जितने फूल बिखेरेंगे यानी कि बांटेंगे वो सब आपकी ही झोली में इन रिटर्न आने वाले हैं। तो खूबसूरती और खुशबू दोनों का ये सिलसिला जो है अपने जीवन में जारी रखिएगा। और चलते चलते यही कहूंगी कि शुभ रात्रि, गुड नाइट, शबा खैर।

0: Cine Quiz.
1: Bonjour, I'm Shaira, Paris की best tour guide. हर इंडियन जो मेरे टूर पे आता है एक ही रिक्वेस्ट करता है, मैं उन्हें थोड़ी फ्रेंच सिखा दूँ, क्योंकि फ्रेंच है ही इतनी कूल लैंग्वेज.
2: এটি বাণী কাপুর অভিনীত কোন ফিল্মের ডায়লগ?
0: চটপট উত্তরটা পাঠিয়ে দিন নিজের নাম আর লোকেশন সমেত হোয়াটসঅ্যাপ বা এসএমএস করে 9903659992 নম্বরে. আর খেলতে থাকুন সিনে সিনে সিনে কুইজ.

0: जांच के लिए। तुम ठीक हो?
1: यस अंकल।
0: हाँ ऑफ कोर्स एवरीथिंग्स ओके पापा। हस्बैंड वाइफ स्टूपिड फाइट्स। अब सो जाओ। गुड नाइट। मम्मा
2: चलो ज्योति

0: से और कभी लड़ती भी है ऐसे के बस खेल रही है मुझसे और आगोश में नन्हे को लिए
1: विल यू शट अप।

याद है मेरा पहला गाना था तुम्हारे साथ, रात को 1 बजे आके जगाया था तुमने और कहा था नीचे चलो गाड़ी में तुम्हें गाना सुनाता हूँ, और फिर सुबह तक तुम सड़कों पर गाड़ी चलाते रहे और कैसेट पर सुनाते रहे ये गाना।